भाई जोगा सिंह करना आवाज पई सच पौड़ी तू पैर ऐसा किया पिछे मुड़ पे मना कोई तेन वेखदा पे वापस आ गई थोड़ी देरी के बाद प्यारी सत्संग भाई जोगा सिंह फिर आंदा फिर पौड़ी से पैर रखे फिर करना।

अजे भी कोई वेचना पे मैं तो समझिया कि हूं कोई नहीं वेचना पर अजे भी कोई टक रहे है मना जरा खैर तीसरी मेरी भाई जोगा सिंह फिर आंदे फिर कन्ना आवाज केड़ी।

मान देह बहर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर ले। गुरु जी कहते हैं कुछ उपा कर लै। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, ये सारे भगतों की बाणी, संतों की बाणी, गुरुआं की बाणी, भगत रविदास, भगत कबीर, बाबा फरीद जी, सारियां की बाणी गुरु महाराज ने एकत्र की है। ये सारे संतां भगतां दे सतपुरशां दे वचन हैं, गुरुआं दे वचन जो हैं। सो मानस दे बाहर ना पावे कछु उपाव मुक्त का कर ले। कहिंदे कोई अपना उपा कर ले, कोई जतन कर ले। ये जो तैनू वक्त मिलिया, बहुत गोल्डन चांस मिलिया है, बल्कि बहुत ही अमोलक समां मिलिया है। इस समय दे विच सुनिया सी जे ये वक्त हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो मनुखा जन्म दे विच ही हो सकता है। 84 लाख जून दे विच, किसी जून दे विच ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होंदा, ना ही गुरु मिलता है, ना ही सत्संगत मिलती है, ना ही परमेश्वर का नाम मिलता है, ना ही इस दे अंदर कुंडलनी जागृत हो सकती है। बोल सतनाम श्री वाहिगुरु। तीन तरह की कृपा होंदी है, तीन तरह की मेहर होंदी है। एक तो अकाल पुरख की मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी क्या मेहर है, सानू उसने ये अमोलक जन्म दे देता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ब्रेन दे देता है, दिमाग दे देता है, कितना तेज दिमाग है, कितना कुछ सोचता है। इस दे विच अपने साथ संगत के दिमाग जो इस सुंदर घाड़त है, ये सुंदर रचना है, शरीर की रचना है, सृष्टि की रचना है, या फिर ये अमोलक नेत्र अखां दे दित्तियां हन, हथ पैर दे दते हैं, जबान दे दती है, कन्ना विच सुन दी शक्ति दे दती है, ये सब अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम।

0: जे को वचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिया। जो आपां इस संगत विच विचार रहे हैं गुरुआं दे वचन ने, संतां दे वचन ने, साधुआं दे वचन ने, जितनी भी गुरबाणी है बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु,
0: सब संतन के वचन इकट्ठे कीते हुए हैं। सो जो आपां सारे रल के विचार रहे हैं कि सानू की करना चाहिंदा है की नहीं करना चाहिंदा है, जे को वचन कमावे सो ये अपने आप ते असी कृपा करनी है। इस नूं असी फिर गुरु महाराज ने कमावे वचन लिखा, जे को वचन कमावे संतन का, कमाउण वास्ते मेहनत करनी पैंदी है। सो इन्हां वचनां नूं कमाउण वास्ते सानूं मेहनत करनी पवेगी, कुरबानी भी करनी पवेगी, सानूं जिहड़ा है इस वास्ते घालना करनी पवेगी, किसे काम नूं घालना, क्योंकि घालना घाले तों बिना इह काम नहीं हो सकदा है। सो फिर तीसरी जड़ी कृपा है, तीसरी मेहर है, गुरु करदा है, गुरु प्रसाद दी तरी है। फिर गुरु दी कृपा हुंदी है, जे को वचन अपना गुरु दी कृपा, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए, फिर पूर्ण कृपा मन बस, जो मन बस विच आ जांदा है। सो गुरु साहब एक तीसरी मेहर करदे हन, कृपा करदे हन, किन्हां ते, जो अपने आप ते एक कृपा करदे हन। बोलो पहली कृपा सुनी अकाल पुरख ने सानू कर दिती है, इस देही को सिमरा देव सा देही बाजार की, वजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का यही ला। इस शरीर नु जिस नु देव ते तरस रहे हैं, उस शरीर सानू बख्श दिता है। गुरबाणी गुरु महाराज ने कृपा की थी, दसां जामियां दे अंदर कितनी कृपा की थी है, गुरु साहिबान ने तत्तें ते वे ते बैठ कर करके सारे अपने परिवार नु बार करके अमर दी दात, सिखी दी दात, जो ए गुरु साहब जी ने कृपा की है, दसां जामे ने अंदर बहुत ही बख्शिश की है। गुरु नु असी मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, क्योंकि गुरु परमेश्वर दा दूसरा स्वरूप है। बोलो सतनाम, गुरु परमेश्वर दा निर्गुण जो परमेश्वर है, निर्गुण जो परमात्मा है, ओ नजर नहीं आउंदा है, परंतु जे उस नु सरगुण स्वरूप दे विच देखना तां गुरु दा दर्शन परमात्मा दा दर्शन है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु,
0: सो कौ टल गुर सेवी अहन सह सवाए, दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख हो, ऐसे समी नूर अरसों परसों चटिया तुद लिठे सचे पातशाह मल जन्म। गुरु दा दर्शन परमेश्वर दा दर्शन है, जिमे सत संगत निर्गुण निर्गुण जो वैकुंठ है, निर्गुण सचखंड है, जो साडी दृष्टि दे विच नहीं आउंदा। गुरु जी कहिंदे हन सचखंड वसै निरंकार, परंतु सरगुण सचखंड जो है, ए साध संगत जो है, सच्ची संगत है, जिथे परमात्मा दा इकट्ठे होके सिमन किया जाता है, जाप किया जाता है, हरि जस किया जाता है, ए सरगुण सचखंड है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु,
0: ए सरगुण वैकुंठ है। कहो कबीर कही है काहे साध संगत वैकुंठ, साध संगत सचखंड दा सरगुण स्वरूप है। सो साध संगत ऐसे तरह जो गुरु जो है, ए परमेश्वर दा परमात्मा दा सरगुण स्वरूप है। गुरु दा दर्शन, गुरु नूं असीं इस करके मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, अरदासां बेनतियां करदे हां, है तां शरीर गुरु दा साडे वर्गा शरीर सी, जिन्हां ने उस ते विश्वास नहीं कीता, भरोसा नहीं कीता, उन्हां दा भला नहीं होया। जिन्हां ने गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु ते परमेश्वर नूं इक जाणिया, गुरु ते विश्वास कीता, धन गुरु नानक ते विश्वास कीता, गुरु दशमेश पातशाह ते विश्वास कीता, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते भरोसा करनगे, उन्हां जीवां दा उधार हुंदा है। उन्हां नूं गुरु जिहड़ा है ज्ञान बख्शदा है, उह ज्ञान बख्शदा है, दुनियावी ज्ञान जो है इह तां इक दुनिया दे विच रहण वास्ते, कुछ बंदा किसे काम दे विच किसे खेते दे विच एक्सपर्ट हो जाता है, परंतु गुरु जो बख्शदा है इह ब्रह्म ज्ञान बख्शदा है, आत्म ज्ञान बख्शदा है, रूहानी ज्ञान बख्शदा है, विछड़े हुए जीव नूं परमात्मा दे विच मिलाउंदा है। इस करके आख्या, जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का वसीठ, दरगाह दा वसीठ, दरगाह दा वकील, वकील जो है। जे सोचन दा उग वह सूरज चढ़ हजार, एते चन होंदिया गुरबिन कोर, गुरबिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना। जितना मर्जी यह मनुख दुनियावी ज्ञान इकट्ठा, किताबी ज्ञान इकट्ठा कर लवे, परंतु परमेश्वर दी समझ गुरु तो बिना नहीं आउंदी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु,
0: कितना कुछ भी यह बन जावे, जा माइक पदार्थ इकट्ठे कर लवे, गुरु जी कहंदे नभ खंडन को राज कमावे अंत चलाए गो हारी। अंत नूं गुरु तो बिना, परमेश्वर दे नाम तो बिना मनुखा जन्म दी बाजी, ए जीव हार जांदा है।

0: गुरु जी कहते नव खंडन को राज कमावे अंत चलेगो। छोटे मोटे अहदे, छोटे मोटे धन पदार्थ, थोड़ा बहुत लख करोड़, ये तो छोटी गल है। गुरु जी कहते हैं कि छोटे मोटे खेते का कोई मालिक बन जाए, कोई अफसर बन जाए, कोई होर कुछ होर बन जाए, वो बड़ी छोटी गल है। जे नौ खंडा का भी इस राजा बना दिता जाए, नौ खंडा का राज ये मालिक भी बन जाए, परंतु गुरु तो बिना, परमात्मा के नाम जप तो बिना, जपन तो बिना अंत चलै गो हारी, अंत न हार जाता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मनुखा जन्म की बाजी हार जाता है, अंत चलै गो हारी, फिर कीड़ी ते राजे दे विच परमेश्वर की दरगाह दे विच कोई फर्क नहीं है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: कोई फर्क नहीं है ते सात संगत भगवान श्री रामचंद्र त्रेते देवता वशिष्ठ जी दे सत्संगत विच बैठे हन, ते सत्संगत आप दे मुखारविंद तो मिना मिना हासा निकल रहा है, मुस्करा रहे हैं आप। वशिष्ठ जी का ध्यान श्री राम जी वल गया, पुछते हैं बेटा की गल है, तुसी तो मर्यादा पुरशोत्तम हो, पता है तुहानू हर मर्यादा का, सत्संग की मर्यादा की हुंदी है, साधुओं को जाण की बैठण की कई मर्यादा हुंदी है, तुसी क्यों हंस रहे हो? बिना कारण तो सियाणा पुरश नहीं हसया करता, बिना कारण तो सियाणा पुरश नहीं हसदा है, ते तुसी क्यों हस रहे हो? कहिंदे गुरदेव मैं बिना कारण तो नहीं हस रहा। कहिंदे फिर की कारण है, तुसी क्यों हस रहे हो? कहिंदे मैं वो कीड़े वाल देख के हस रहा हूं। कहिंदे कीड़े वाल देख के हसना, कीड़े वाल देख के हसना, कहिंदे इसकी लत टुटी हुई है, कीड़ा उपर चढ़ने की कोशिश करता है फिर डिग पैंदा है, इसकी बेचारे की लत टुटी हुई, जो दो लतां टुटियां हुई हैं ते उपर चढ़ने की कोशिश करता है, कंध ते जां किसी दीवार ते जां किसी चीज ते चढ़ने की कोशिश करता है, बेचारा फिर तिलक जाता है, डिग पैंदा है, फिर चढ़ने की कोशिश करता है, फिर डिग पैंदा है। कहिंदे इस विच हसण की क्या गल है, कीड़ा है बेचारा, लत्तां टुटियां हुई हैं, ते इस करके फिर हुण चढ़ता है फिर डिग ही पवेगा, इस विच हसण की क्या गल है? श्री राम जी कहिंदे हन गुरदेव मैं इस करके हसदा, ये कीड़ा सत बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुका है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मैं इस करके नहीं हस रहा, कीड़ा क्यों है? यह तो परमेश्वर की रचना है, यह तो परमात्मा की रचना है। कोई निर्धन है, कोई सरदन है, कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बनाया, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी जूनी विच पाया, कोई किसी जूनी दे विच पाया, यह तो परमात्मा की आश्चर्य रचना है, जो ये संसार की रचना रची हुई है, कुदरत है, जो कुदरत का जो खेल ये परमात्मा ने रचा हुआ है अनेक स्वरूपों के विच। सो इस करके नहीं मैं हस रहा, इस करके हस रहे हैं सीता, श्री राम जी कहने लगे यह कीड़ा जिस तू अज ये दीवार ते नहीं चढ़िया जा रहा, बेचारा कीड़ जूनी दे विच पिया हुआ है, जिसकी लत्तां टुटियां हुई हैं, फिर डिग पैंदा, फिर कोशिश करता, यह सत बार इंद्र बन चुका है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इंद्र की पदवी एक राजा महाराजा इस दुनिया के सत्संग इंद्र के सामने इस भोग पदार्थ तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं हैं। स्वर्ग लोक दे जो पदार्थ हैं उन्होंने सामने ये दुनियावी पदार्थ कुछ भी मायना नहीं रखते हैं। यह सत बार इंद्र की प्राप्ति कर चुका है, परंतु फिर अज इसकी की हालत है, इसकी की हालत है, की दशा है, कीड़ा बनया है? कहते असी तो इस करके हस रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, सो सात संगत नव खंडन को राज कमावा अंत चला गुहारी, परमात्मा दे नाम जपन तो बिना, ज्ञान तो बिना, गुरु तो बिना इस मनुख की की हालत हुंदी है, की दशा हुंदी है, कितना भी वड्डा क्यों बन जावे। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने जीव की हालत की है पूरे गुरु तो बिना, क्यों गुरु नूं मत्था टेकदे हां, क्यों गुरु अगे अरदासां करनियां हन, क्यों गुरु नानक शरीर तां उन्हां दा साडे वर्गा सी, विश्वास नहीं सारिआं नूं आया, ते साध संगत परंतु गुर परमेश्वर इक्को जां, गुरु महाराज कहिंदे हन इस करके गुरु अगे नमस्कार कर असीं नमस्कारां करनियां, मत्था टेकणे हां। गुरु परमेश्वर दा दूसरा स्वरूप है, गुरु गोबिंद गोबिंद।

तान गुरु नानक पातशाह इस शब्द विच अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा विच अरदास कर रहे हन। हे निरंकार आप सरबग हो असी अलपग जीव हां, आप निरंकार हो असी भुलनहार हां, असी कूड़ यार हां, जो भी बचन करदियां उस नाल कूड़ दी लब लगी होंदी है। आप दा नाम सदा सच है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। असी गुनाहगार हार हार भुलन हार हां, इसलिए संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कुछ कीता नहीं। तेरे दर ते ता जपन वालिया दी इज्जत है सत्कार है, पर असी तो केवल तेरी बख्शिश लोड़दे हां। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई चंगा कर्म नहीं, कुड़ियार असी कुड़ियार हां।

पर असी नाम दा स्वाद छड़ के रसा कसा विच फस गए, अहंकार विच फस के दुख पाए। ए दुख तेरे भेजे हुए नहीं, ए साडे अपने ही सहेड़े हुए दुख हैं।

तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म। छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया। छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही तां रिद्धियां सिद्धियां नूं प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर ली। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों वली कंधारी जिहड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिल्ले कट्टे तपस्या कीती, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने जोर दे नाल पानी बंद कीती बैठे। जेड़ा मेरा चेला होवे उसनू ए पानी मिल सकदा। धन गुरु नानक पातशाह क्योंकि जगत जलंदे नू ठारन जो आए सन, जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नू दुख दिता जा रहा है, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नू मारिया नहीं, पापी नू तार देना। जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी, पुन्ना नू पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वली कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बैठ के बड़िया रिद्धियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया, आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नू भेजिया, जा मरदानिया पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है तां आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी, तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहा, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नूं पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह अच्छा अहंकार जो करना सी मर्दानिया आ दो पत्थर पुट सत करतार सत करतार नाम जपदिया जदों ए दो पत्थर चुके तां विचों अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी, सारा दा सारा तले आ गया, उपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया मेरियां शक्तियां दा इसनू पता नहीं, मैं की कर सकदा हां, आ मैं हुणे दसदा हां। अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मर्दाना कहन लगा महाराज कृपा करो मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया तू करतार नू चेते रख, जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहिंदे हन ना उन्हां दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एदा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती कृपा कीती कोट ब्रह्मंडा दे बांधे सब। जां आपने नदर कीती तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होला हो गया, एडियां शक्तियां दा मालक सां पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा ए मेरे अहंकार नूं दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिद्धियां सिद्धियां अहंकार ते क्योंकि पुन्ना ते रिझदा रब। हो सकदा मैनूं तारन लई मेरियां रिद्धियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनूं तारन आया होवे, मन नीवा हो गया।
ਤੇ ਫਿਰ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਲੋ ਕੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਛਿੜਤੇ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦੇ। ਪੋਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ

ऐसा विचार करो, हम भी ऐसे बगीचे के बूटे बन जाएं जिस बगीचे के बूटों को वासना रहित फल लगता है, निर्वाण पद प्राप्त होता है। ऐसा फल जिसमें नाम रस है, नाम रस के अलावा और कोई भी वासना नहीं, और ऐसे गुरु को नमस्कार करें जो ऐसा माली है, जो इन बूटों को अमृत से सींचता है। देखना, इस बगीचे के बाहर जाकर देखो, आसपास बिखुआ के कुंटा, बाहर ईर्ष्या है, दुविधा है, कपट है, छल है, बाहर तो जहर है। इसीलिए हमें चेतन करते बोले, देखना इसके भीतर आपको अमृत से सींचा जाता है। वो ऐसा अमृत जिसने आपको अमर करना है, जिसने आपको जन्म मरण के चक्कर से बचाना है, आवागमन से बचाना है। और ऐसा है जो गुरु की नजर में फूलता है, उस बूटे को ऐसा फल प्राप्त होता है जिस फल से वो सच प्रकट हो जाता है, जिस सच से ये बोया गया है। ऐसे मालूम होता है गुरुमुख की टेक जो है, नाम है, ओनली नाम अखवाहिगुरु, गुरुमुख की टेक ओनली नाम। गुरुमुख परमात्मा के गुणों की सुगंधि बांटता है, ये गुरुमुख का दान है। गुरुमुख परमेश्वर के नाम की कमाई कर, गुरु शब्द की कमाई कर, अपने मन को, अपनी मत को तो लेता है, ये गुरुमुख का स्नान है। पानी से तो सब नहा लेते हैं, लेकिन जो वाणी से नहाता है वो गुरुमुख है। देखना, पानी से हमने अपने तन को, अपने शरीर को स्नान कराना है, ऐसे नहीं कि हमने स्नान नहीं करना। शरीर को पानी के स्नान की जरूरत है, लेकिन पानी का स्नान के अलावा आपको मन को भी वाणी के स्नान की जरूरत है। आप जितनी देर तक वाणी से स्नान नहीं करते, आपका मन अरोग ना होगा। देखना, जे मन अरोग नहीं, जीवन भी अरोग नहीं। जे जीवन अरोग नहीं, ये काया भी, ये तन भी अरोग ना होगा। सिर्फ हम सोच लें कि सिर्फ तन को अरोग रखें, मन जे तंदुरुस्त ना होगा, ते शरीर भी काम क्रोध काया को गाल है, जो कंचन सुहागा टल। मन क्रोध करता है, मन काम करता है, लोभ करता है, लेकिन भोगना तो शरीर को पड़ता है। भोगता शरीर है, इसलिए गुरुमुख
वाणी से स्नान करता है, प्रभु की वाणी से स्नान करता है, अपने मन को भी अपने मत को भी। गुरसिखी का स्नान बताते हुए भाई गुरदास बोले थे, गुरसिखी दा नामना गुरमत लै दुरमत मल तोवै, गुरु की मत लेकर खोटी मत को तो लेना। पितर शब्द अमृत वचन है गुरबानी के, ज्ञान महारस नाई है भाई, मन तन निर्मल होए। गुरु के ज्ञान के महारस में लिव लगाकर स्नान करना, सुरती जोड़कर स्नान करना, मन तो अरोग होगा लेकिन मन के साथ साथ मन के रिश्तेदार, मन के संबंधी जो ज्ञान इंद्रे हैं वो भी अरोग हो जाएंगे। देखना जे मन पितर हो गया, देखनी भी पितर होगी, बोलना भी पितर होगा, सुनना भी पितर होगा, सुंघना भी पितर होगा और परसना भी पितर होगा। बिना मन की पितरसा दे बेशक पानी से कितना स्नान कर लें, इंसान की आंखें तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की देखनी इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के पांव तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान की चाल इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान की जबान तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की बोली इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के हस्त पाव हाथ तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान के कर्म इंसान जैसे नहीं रहते। कारण क्या है? पानी से शरीर को तो धो लेता है लेकिन मन को वाणी से नहीं धोता। गुरमुख ने, गुरु के बगीचे के गुरमुख ने, प्रभु के बगीचे ए अमृत की बाड़ी के गुरमुख ने स्नान किया है। ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करो लेवला। परमेश्वर से बिरती जोड़कर देखना, ऐसा स्नान किया अब तो उसकी आंखों के सामने सब में परमात्मा की जोत दिखाई देती है, उसकी देखनी कैसी हो गई। अब तो ये बोलता है, तन मन हुए निहाल जां गुर देखा सामने। अब तो सुनता है, सुनो सत वाणी। अब तो बोलता है, रसना राम रसायन माती अखु वाहिगुरु। गुरमुख की टेक नाम ओनली नाम अखु वाहिगुरु, ओनली नाम। गुरमुख परमेश्वर के गुणों की सुगंधी बांटता है, यह गुरमुख का दान है। निरपो होए पजय भगवान, सा संगत मिल कीनो दान अखु वाहिगुरु। ऐसा दान, ऐसा दान करने वाला गुरमुख एक बेनती कर दूं, ये कभी मरता नहीं अखु वाहिगुरु। गुरमुख कभी नहीं मरता। देखना, शरीर जन्मेगा मर जाएगा लेकिन गुरमुख नहीं अखु वाहिगुरु। मेरे साहब ने बोला, नानक मुए ना आखियां जे गुर कै शब्द समाहे। उन्होंने कदे मरिया होया मत बोलना, गुरमुख को कभी मत बोलना कि गुरमुख मर गया। गुरमुख नहीं मरता, गुरमुख कभी नहीं मरेगा। शरीर मरता है, जो जन्मे सो जानो हुआ, लेकिन ये बोला गोविंद भगत अस्थिर है थिया। जिसने जन्म लिया वो मरेगा लेकिन गुरमुख नहीं।
जो गुरु के शब्द में समा जाए वो मरता नहीं। पितृवाणी में कहा, तिथे काल ना पड़े जिथे गुरु का शब्द अपार। जिथे गुरु का शब्द है उत्थे काल नहीं पो सकता। गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर में रहने वाला होता है। शरीर तो आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं, हम शरीर में रहने वाले हैं। हम तो तब भी थे जब शरीर नहीं था, हम तब भी होंगे जब शरीर ना होगा। गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं। शरीर में रहने वाली रूह जो गुरु के सन्मुख रहती है उसको गुरमुख बोलते हैं। और गुरमुख के स्वरूप को ऐसे बताया गया, जो गुरु के सन्मुख रहता हर बात में गुरु को आगे करता है, अपने जीवन में गुरु की सोच को आगे रख कर जीता है। ऐसे गुरमुख के बारे पितृवाणी में बोले थे। गुरमुख तो यह कहता है, सब कुछ होते हुए भी गुरु के पास जो समरस शक्ति है वो गुरु गुरमुख को दे देता है, लेकिन गुरमुख ये बोलता है, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो आखो किच हर किया पेयो कबीर कबीर। पर कबीर जी बोलते हैं गुरमुख के जीवन के लिए, वो तो बोल रहा है ना हम किया ना करेंगे ना हमारा शरीर कुछ कर सकता है। देखो कबीर कबीर अब संसार बोल रहा है, एक कृपा किसकी है जिसका कबीर ने नाम लिया। ये अंदर से मोह ममता मर चुकी है, ये किसने मारी? प्रभु के नाम। जिस प्रभु के नाम की समर्था प्रकट हुई है वो ही करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक मनमुख भी है, कर तो कुछ सकता नहीं लेकिन अपने आप को गिनाता है। वो तो सत्संग में आकर भी आपकी मन की बात मानता है, गुरु की नहीं। वो ये बोलता है हम किया हम करेंगे, अखुवाई हम मूर्ख अखुवाई गवार करने वाला बिसरिया दूजे पाए पिया। कर कुछ सकता नहीं लेकिन मनमुख बोलता है कि हमने किया, हमने सत्संग बुलाया, हमने इकट्ठ किया, हमने बोला, मेरे बोलने से ये बात हुई। मनमुख तो ये बोलता है, जो करने वाला है उसको उसने बिसार दिया है। कर कुछ सकता नहीं, पितृवाणी में ऐसा बोला, कहते गुरमुख मुए जीव दे परवान है, मनमुख जन्म मरा है। आखो भाई देखना, आपने एक वृक्ष देखा, वृक्ष में आपने टाणियां देखी, टाणियों में पत्ते, पत्तियों में फूल, आपने फूलों को फल बनता भी देखा होगा। हवा आती है चूलते हैं, पता पता उसका खेड़े में है, फूल खेड़े में है, उसकी टाणियों भी हवा से चूल चूल कर मस्ती में शोर मचाती हैं। लेकिन उसे टाणियों में एक टाणी तोड़ ले, देखो जन्म तो वृक्ष का हुआ, सब टाणियों का हुआ,
लेक टाणी उससे तोड़ लें, उस टाणी को तोड़कर उसको छील भी लें, अब वो टाणी नहीं रहेगी, वो छड़ी बन जाएगी। हम उसको अब टाणी नहीं बोलेंगे, उसको छड़ी बोलेंगे, लेकिन छड़ी तो मुर्दा होती है, छड़ी तो जीवित नहीं होती, छड़ी को तो फूल नहीं आएंगे, छड़ी को फल नहीं लगेगा, छड़ी जीवित नहीं, छड़ी मुर्दा हो चुकी है। वृक्ष से टूटने से छड़ी मुर्दा होगी, वृक्ष से टूट गई उसका जीवन मर गया, वृक्ष से टूट गई अब वो खिड़ेगी नहीं, वृक्ष से टूट गई फूलेगी नहीं फलेगी नहीं। देखना ये जिस वृक्ष से ये टाणी को तोड़ा गया, दूसरी टाणी को देखो जो अभी भी वृक्ष के साथ है, वो जीवित है, उसमें रस है, वो वृक्ष से रस लेती है, धरती से रस लेती है। क्या हो गया जे पतझड़ आ गई, लेकिन बसंत ऋतु की फिर कामना है। आंखों भाई जो वृक्ष से जुड़ी है फिर बसंत ऋतु आ सकती है, उसमें खेड़ा आ सकता है। देखना टाणी का जन्म, छड़ी का जन्म हुआ तो धरती से, लेकिन जन्म लेकर जीवन में एक वृक्ष से जुड़ी रही, एक वृक्ष से टूट गई, जो टूट गई वो मुर्दा हो गई, जो उसके साथ जुड़ी रही वो जीवित रही। ऐसे ही मन मुख वो छड़ी है जो परमेश्वर वृक्ष से टूट गए हैं, उनका नाम साकत है, उनको मनुख नहीं बोलते, मनमुख बोलते हैं, वो मुर्दा है, वो जीवित नहीं, वो आत्मिक तौर पर मर गए हैं, जीवित नहीं, वो छड़ी जैसे हैं। बेशक कितना अपने आप को सवार लें, लेकिन जीवित नहीं, आत्मिक तौर पर जीवित नहीं है, मुर्दा है, उनको फल नहीं लगेगा, वो किसी को भी अपनी बगल में सुख नहीं दे सकते, जैसे छड़ी किसी को छांव नहीं दे सकती। छड़ी किसी को पीट तो सकती है, सुख नहीं, मन में किसी को दुखी तो कर सकते हैं, लेकिन सुख नहीं। शायद इसीलिए हमें बोला, मन मुखा नालो तुटी भली, जिन माया मोह प्यार। लेकिन गुरमुख वो छड़ी है, वो टाणी है, जो परमेश्वर वृक्ष से जुड़े हुए हैं। देखो जन्म तो मनुख का भी, जन्म गुरमुख का भी माता की कुख से हुआ है, जन्म एक जैसा है, लेकिन जन्म पाकर जीवन में एक तो प्रभु वृक्ष से टूट गए, एक परमात्मा की याद में जुड़े रहे, जो जुड़े रहे वो तो फल प्राप्त करते हैं, वो खिलते हैं, सदा विकास में रहते हैं। आप विकास में, दूसरे को भी विकास में रखते हैं, लेकिन जो मनमुख हैं, टूट गए, उन्होंने तो अपना जन्म भी बर्बाद कर लिया, अपना जीवन भी निष्फल कर लिया, ऐसे लगता है वो अपना मरना भी निष्फल कर रहे हैं, मरना भी बर्बाद कर रहे हैं, बर्बादी पर हैं, मरना खराब कर रहे हैं। देखो जीवन तो वो है जो जीवन जीते ही हम जीवन जीते हुए अपने ऐसा जीवन जिए, अपने जन्म को भी सवार लें, संसार वाले कहें इनकी माता तो धन है जिसने जन्म दिया है, जीवन में भी धन धन हो, ते अपने जीवन में अपने मरने को आप सवार कर चले जाएं, ताकि जाने के बाद सब प्यार से याद करें।
ऐसा ही बोला। गुरमुख मुए जीवदे परवान है, ओता जूंदे भी परवान ते मरण तो बाद भी परवान, पर मानमुख जन्म मरा है आखो वाहिगुरु। मानमुख ने अपना जन्म बर्बाद किया है, कैसे पितरबानी में शब्द से हमें समझाते हैं।

छो जन हुए परवान, कुल उधारे अपना। छो जन हुए परवान। कोई समा था किसी से सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले सुगंधी के नजदीक पहुंचे। वैसे सुगंधी का एक स्वभाव भी है, कैसा है? सुगंधी हमेशा ही फूल के नजदीक ले जाती है। जी अगर नजर फूल ना भी आए तो उसकी याद में समो देती। ये सुगंधी का स्वभाव है। सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले जिधर से सुगंधी आ रही थी उधर पहुंच गए। जिसके पास वो फूल था सुगंधी देने वाला, वो बोला, देखना ये सुगंधी इस फूल की है। देखने वाले ने फूल को देखा, उसके खेड़े को देखा, उसकी पत्तियों को देखा, गुलाबी रंग को देखा, बहुत मस्त हुआ, कैसा सुंदर फूल। समय बीत गया, कई सैकड़े वर्ष बीत गए, लेकिन सुगंधी फिर भी आती रही। सुगंधी को सूंघने वाले फिर उसके पास पहुंचे। पहले तो आपने फूल दिखाया था, अब तो आपके पास फूल नहीं है। फूल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सुगंधी कैसे आ रही है? वो बोला, ये बात तो बिल्कुल सत है, हमारे पास फूल नहीं, ना हम फूल को दिखा सकते हैं। जब हमारे पास फूल ही नहीं, दिखाएं क्या? लेकिन ये सुगंधी उस फूल के अत्र की है। अब फूल नहीं है, हमारे पास अत्र है, ये अत्र की सुगंधी है। ऐसे ही मालूम होता है गुरमुख जीवन में सुगंधी बांटते रहे, आंखों भाई सूंघने वाले सूंघते रहे। जितनी देर तक गुरमुख उनको शरीर मिला, उतनी देर तक उस शरीर में सुगंधी का प्रकाश किया। उनका संग करने वाले वो शुभ गुणों की सुगंधी लेते रहे। जो जीवन में दुर्गंध थी, मनुख के भीतर थी, उस दुर्गंध को मिटाने के लिए गुरमुख का संग क्या है? सच का संग, सत का संग, ऐसे विचारों का संग जो सत में प्रवेश करते हैं। गुरमुख का बोलना भी सच, गुरमुख का गाना भी सच, गुरमुख का सुनना भी सच, गुरमुख का देखना भी सच। ऐसे लगता है गुरमुख के पास सच के अलावा कुछ और होता ही नहीं, सच ही सच। सुगंधी लेते रहे, पर कितने वर्ष बीत चुके, गुरमुख का शरीर तो नजर नहीं आएगा, ना आवेगा, लेकिन सुगंधी तो आज भी लेने वाले लेते हैं। आखो भाई, जीव दिया मोया ना बिसरे। आखो भाई, जीते हुए भी सुगंधी देते थे, हम उनको याद करते थे। आखो भाई, ऐसे गुरुमुख सदगुरु का संग करते थे, सदगुरु को अपने जीवन में भी याद करते थे, सदगुरु से गुरु शब्द की सुगंधी लेते थे,
गुरबाणी की सुगंधी लेते थे, गुरुशब्द की विचार की सुगंधी लेते थे। आप देखो शरीर चले भी गए, हम भी वही सतगुरु की, वही शब्द की, वही गुरबाणी की सुगंधी आप भी ले रहे हैं। ऐसे मालूम होता है कि गुरमुख जीते जी भी सुगंधी बांटते हैं, मरने के बाद भी बांटते हैं। गुरमुख जीते जी भी अपने सतगुरु को नहीं भुलाते, मरने के बाद शरीर छोड़ जाते हैं, उनकी याद में बैठने वाले भी उसी ही सतगुरु को याद करते हैं। इसलिए ठीक बोला, गुरमुख मरते ही नहीं। मरेंगे तो हम शरीर मरेंगे, वो कैसे मरेंगे? इसलिए हमें बोला कि देखना गुरमुख की बरसी मत मनाना, गुरमुख की याद मनाना। बरसी तो उसकी मनाएंगे जो मर गया है, शरीर मरा है, गुरमुख तो मरा नहीं। गुरमुख की याद मनाओ, बरसी नहीं। मरत मरता तो है ही नहीं। देखना बंसरी बजती थी, बंसरी बजाने वाले बंसरी बजाते रहे, बहुत बजाई, सुनने वाले बोले बस करो, बहुत हो गया, आपने बंसरी बजा ली, अब तो आराम कर लो। लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। फिर बोलने वाले बोले आप कुछ खा पी लो, आपको भूख लगी होगी, बाद में बजा लेना। लेकिन बंसरी रुकती नहीं। फिर बोला आप पानी पी लो, प्यास लगी होगी, लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। ऐसे लगता है अब तो बंसरी बजाने वाले को बजा रही है, बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा। अब ऐसे मालूम होता है कि बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा, बल्कि बंसरी ही बजाने को बजा रही है, बंसरी बजाने वाले को बजा रहा। देखो बंसरी बजाने वाला हीरो हो गया, वो तो बंसरी का रूप हो गया। अब उसको ना भूख है, ना प्यास है, ना आराम है, बिल्कुल हीरो हो गया। ऐसे ही गुरमुख जो शब्द का अभ्यास करते हैं, नाम वाणी का अभ्यास करते हैं, प्रभु की कीर्ति करते हैं, इतना अभ्यास किया शब्द का, इतना अभ्यास किया शब्द का, अभ्यास करते रहे करते रहे करते रहे, ना उनको ऊंग है ना भूख है। बोला गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भूख है, हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिते आत्म राम प्रकाश। ना ऊंग है ना भूख है। मैं एक बेनती करूं, गुरमुख को कभी आलस आता ही नहीं। जे हमें आलस आता है तो समझे ना अभी हम गुरमुख नहीं बने। आंखों भाई जिसका गुरु ये बोले आपने अमृत वेले को संभालना है, आलस क्या करेगा? गुरमुख आलसी नहीं होता। जे अगर अभी भी हमें आलस है तो हम गुरमुख नहीं। आखो भाई गुरु मनुख हैं, मनुख आलसी होते हैं। आखो भाई गुरु लेकिन गुरमुख नहीं। गुरमुख के जीवन में ना ऊंग है ना भूख। आखो भाई गुरु शब्द का अभ्यास करते करते ही रहे करते ही रहे, गुरु का शब्द का अभ्यास करते करते ऐसे हुआ अब तो ऐसे लगता है अभ्यासी अभ्यास नहीं कर रहा, बल्कि गुरु शब्द अभ्यासी को अभ्यास करा रहा है। अभ्यासी कीर्तन नहीं कर रहा, बल्कि कीर्तन अभ्यासी को कीर्तन करा रहा है। आज नाम वाणी की कमाई अभ्यासी नहीं कर रहा, बल्कि नाम वाणी अभ्यासी को अभ्यास करा रही है। आज देखना अभ्यासी तो जीरो हो गया, अभ्यासी कहां गया? अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू ही रह गया। आखो भाई अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू रह गया। जब मैं था आप नहीं थे, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अब तो ऐसा हो गया जब मैं ही मर गई,
जद हमारी मैं मर गई, केवल तू ही रह गया, फिर तू तो मरता नहीं, मरने वाली तो मर गई। आखो वाहिगुरु, मरने वाली तो मर गई, अब कौन मरेगा? कोई भी नहीं मरेगा। अब कौन मरेगा? मरने वाली मर गई। आखो वाहिगुरु, मरने वाली मैं मर गई, जिसकी मैं नहीं मरी वो जीते ही मर गया, जिसकी गुरु शब्द की कमाई से मैं मर गई वो कभी नहीं मरेगा, गुरुमुख ने मैं मार ली। अब तो कहते हैं गुरुमुख नहीं मरेगा। आखो वाहिगुरु, नानक मुए ना आखियां जे गुर कह शब्द समाए। एक पितर शब्द में बोले, परिसरी जे उबरी हो मैं गई मरा हो। कहंदी बड़े चंगा होया, पली होगी, चंगा हो गया। साहिब कहंदे पली सरी बड़ी अच्छी होगी, मैं बच गया। आखो वाहिगुरु, पली सरी जे उबरी, उबरी बच गया। कहंदे होमे जेड़ी सी ना मेरी, मैं मर गई। आखो वाहिगुरु, होमे गई, होमे मुई कराओ, मेरे घर विच ही मर गई। आखो वाहिगुरु, मेरे सामने ही मर गई। जे नस जांदी तां शायद फिर वापस आ जानी, मारी गई। आखो वाहिगुरु, होमे मुई कराओ, मेरे घर चो ही मर गई। आखो वाहिगुरु, जब मेरे घरों मर गई तो मैं बच गया। आखो वाहिगुरु, कहंदे फिर होया कि जदों ये मर गई, कहे दूत लगे फिर चाकरी। आ जिहड़े सी ना पंज, पहला मैनूं सताउंदे सी, आखो वाहिगुरु हुण मेरी सेवा करन लग गए। आखो वाहिगुरु, कहंदे जिनी देर तक होमे सी ये मैनूं सताउंदे सी, पांच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे। देखो मेरा चित करता सी अमृत वेले उठा, ये लोभ मेरे तो पहले उठ पैंदा सी। एक सवान दो सवानी नाल ये दोनों लोभ रूपी कुत्ता मेरे पहले उठ पैंदा सी। मैं अजे सिमरन नहीं सी करता, बाणी नहीं सी पढ़ता, पहला भौंकण लग पैंदा सी। आखो वाहिगुरु, हाथ में मैं पोथियां फड़दा सी ते मन विकार करता सी। आखो वाहिगुरु, ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सौ कहावे, तैसा हर्क तैसा सोग, सदा आनंद तैनही वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। किवें श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी फुरमा रहे हैं, आप पढ़िए।

ऐसा गुरुमुख का जीवन जो जीवन मुक्त हो जाता है प्रभु की आज्ञा को मानकर, ऐसा प्रभु का पुजारी जो जीवन में प्रभु के गुणों की सुगंधी लेकर दूसरों को भी ऐसी सुगंधी बांटता हुआ, ऐसा फूल जो किसी के गल का हार बनकर, किसी के मस्तक का श्रृंगार बनकर कुर्बान हो जाता है। फूल होना भी ऐसा चाहिए, सुगंधी बांटता रहे, तोड़ने वाले के भी गल का हार बन जाए, किसी के मस्तक का श्रृंगार बन जाए। गुरुमुख का जीवन ऐसा ही है, मजलूमों का सहारा बन जाता है, दुखियों का सहारा बन जाता है, उनको सुखों की सुगंधी बांटता हुआ अपने आप को तो कुर्बान कर लेता है, लेकिन शरीर के मरने के बाद भी अपनी सुगंधी जो बांटता रहा जीवन में, वो मरने के बाद भी बांटता रहता है। ऐसा परोपकारी जीवन गुरुमुख का है, जैसा भाई गुरदास ने बोला, गुरुमुख परोपकारी बिरला आया। इत्थे ही विचारां दी समाप्ति है। कीर्तन करते हैं, विचार करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, कई प्रकार दिया भुलां हो सकदियां हन, बख्श लेनी है बख्श लेनी। दूसरी बार हिंदी विच व्याख्या करते हुए इस तरह एहसास हुंदा है कि कई बार परमेश्वर दी ऐसी कला वरती है, जदों पितर बाणी अपने विच समो लैंदी है फिर याद नहीं रहता क्या बोलना है क्या नहीं। जे उस समय हम उधर चले जाएं कन्वर्सेशन में, तो अंदर से टूटना पड़ता है, टूट कर बात नहीं बनती। टूटने वाला तो टूट जाएगा, दूसरे को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं क्षमा की याचना करता हूं। बोलते बोलते नहीं मालूम रहता क्या बोलना है। ऐसे लगता है बोलने वाला ही बोलता है, उसकी इच्छा है जैसा बोले। हम बैठ भी जाएं, नित की बानी याद करते हैं, लेकिन जे नहीं बोलना चाहता तो बानी स्टेज पे ही भूल जाते हैं। ये याद कराता है तो कई कई वर्षों की बानी चेते की चेते आ जाती है। ऐसे है, हर आपे बोले आप बुलावे आखो वाहिगुरु। आपके दर्शन करता हूं तो ऐसे लगता है आप पे संगत सद बहाल है, आखो वाहिगुरु। मैंने आपको नहीं बुलाया, बुलाने वाले ने बुलाया था, आखो वाहिगुरु। बैठाने वाले ने बिठा लिया, अब समाप्ति हो रही है, आप पे विदा करावे, विदाईगी भी आप देगा, आखो वाहिगुरु। लेकिन इसकी विदाईगी देने का एक बहुत ही बिस्माती रंग है, जब बुलाता है तो अपने आप को विस्मादी रंग में प्रकट करता है, जब आपको भेजता है तो आपके ऊपर विस्मादी रंग प्रकट कर देता है। देखना, बाहर जाने से पहले इस विस्मादी रंग को संभाल लेना, आखो वाहिगुरु, ये बहुत काम आएगा। बाहर जाकर जो कुछ और रंग है वो काम नहीं आते, वो रंग तो बिंस जाते हैं, मैले हो जाते हैं, उस रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है। लेकिन ये रंग जे आप ने संभाल लिया, ना खोया, फिर जब मिलेंगे आपको सुनने का अवसर परमेश्वर और दे देगा, और मेरे भाग जागेंगे।
کیونکہ آپ ایسے سننے والے بن جائیں گے، ایسے شروتے بن جائیں گے کہ شروتے میں بہت شکتی ہے. جے شروتا اچھا مل جائے، وشمادی رنگ والا مل جائے، بکتے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سب باہر نکال لیتا ہے، اندر نہیں رہنے دیتا. یہ سچائی ہے. جے شروتا وشمادی رنگ میں سنے، بکتا جو مرضی لکونا چاہے اندر نہیں لکو سکتا، وہ پرگٹ ہو جائے گا. شروتے نے اندر سے باہر نکال دینا ہے. میری تو یہ پرارتھنا ہے آپ کو ایسا ہی شروتا بنائے، جب پھر افسر ملے میں آپ کے درشن کروں تو مجھے لگے کہ آپ ایسے شروتے ہیں. اب تو صرف اندر سے جو پرمیشر نے اندر دیا ہے آپ اس کو باہر ہی نکالیں گے نہیں، بلکہ ایک میں ایک ہو جائیں گے. آنکھوں بھائی آپ کے سننے والے تے سنانے والے میں انتر ختم ہو جائے گا. آنکھوں بھائی یہ میری پرارتھنا ہے. آؤ انند صاحب جی کا پاٹھ. رام کلی محلہ تیجا انند، ایک اوہنکار ستگر پر

तेरा कट कट के अंतर की जान तुपरा मेरा अंतर जामी जान कट कट के अंतर की जान तुपाले।

स्वामी सब विद जाने प्रा मेरा अंतर जामी जान हर अंतर जामी सब विद जाने और किस पे आप सुनाए

सोई कसम हमारा तब मेरा अंतर जामी जान। मेरा खसम कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, अंतर्जामी करने हारा, सब कुछ करन कराने वाला उपापी, अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा। ते जिदा एहो जिहा खसम होवे, जिदा सब कुछ कर करा रहा होवे, ते उहदी कोई मंग रह जांदी, कोई इच्छा रह जांदी, कोई भावना रह जाती नहीं, क्योंकि उहदा मालिक सब कुछ जानता है, सब कुछ आप करन करावन हार है, ते उहनूं ते कमी हो ही नहीं सकती। किनू अंत

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है, इस शरीर मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाए, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की कम कीता है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जागाए, तेनू शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेनू दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाउना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहिंदे हन ए इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूंडी चाल, इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

ऐसों के संदर्भ के पाठ्या जी समाधि आवाज जी की कर रहे हो तो हजूर कह

स्नान करके चले आए, एक दिन चले सुर जाए एकांत कह के अपने सारे से मूल मंत्र का जाप करे। सर बड़ा महान बड़ी शक्ति है ये लंकारी मंत्र, जितना जप लो यदा बड़ा काम। तुरदिया फिरदिया उठदिया बहदिया हर नाम, वो नाम वाहगुरु जी का ये जपांगे। सतगुरु दिया मेहरा फिर सानू की मिलेगा, साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक दुखी पर लोक लगाइए उस उपरंत कीर्तन की समाप्ति और आरंभ।

फिर वचन सुनाया पवाईशर सिंह कहंदे एक बारी बाबा जी एक गुरुद्वारे वाल उंगल करके कहण लगे किन्ना सोहना बनिया है। बाबा ईशर सिंह जी कहंदे मैं अगों कहता हां जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। कहंदे ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜ ਕਰਕੇ ਚਪੇੜ ਪਈ।

0: तेरे को सत बजन नहीं कहा जाता आखो सत
1: केंद्र एक बार असी कह बैठे लेकिन लेकिन लेकिन बाबा जी ने फिर ताड़ना की केंद्र बिल्कुल ठीक लेकिन कितने लिखे गुरु ग्रंथ साहब आखो साधना गुरु ग्रंथ साहब के कितने लफज नचोड़ कढ़ो गरीबी की पढ़ाई गरीबी की सत बचन की पढ़ाई निम्रता की पढ़ाई कह लगे सानू कहते फारसी सिख गए लेकिन बिल्कुल ठीक इत सत बचन की पढ़ाई कोई गल कहनी सत बचन जी अच्छा जी

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिंत करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू